आजा कांचो बाई वंचन आजा दीदी आजा सात वर्ष की थी यहाँ विवाह उन गयो बुद्धि थी न रती

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनी में धुप्लो सात मेगाहर्ट्ज मद्र प्रसाद सापकोटा आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 15 तारीख श्रावण 30 गते शनिवार तृतीय तिथि अब स्तुति करौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडाखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छुट बोलिए श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।

ने जाना परिजोशो दामना रे यो कांता माशाय करे कन्या बिकी करे तो सब आए हेरतना रामी ता गए रामी जी सब

म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलवती र पुत्र गुनुला माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।